हर दिन हर पल भारतीय संगीत का चैनल रागम डीटीएच। बेला सावेर के स्वर में सुनते हैं दरिया हब की भक्ति रचना, आदि अंत मेरा है राम।

ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत, ये आकाशवाणी बई की भेंट थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम सातों दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग जौनपुरी पर यशराज वादन सुनवाएंगे. कलाकार हैं अनुजीत राय चौधरी. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संजय कुमार मुखोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी पर यशराज वादन. कलाकार हैं अनुजीत राय चौधरी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. This morning, we present a Hindustani instrumental recital, followed by a Hindustani vocal recital. Listen first to a recital on the Yasraj in the Rag Jaunpuri. Our artist is Anujit Roy Chaudhary. Accompanying our artist on the tabla is Sanjay Kumar Mukhopadhyay. Listen now to the Rag Jaunpuri on the Yasraj. Our artist, Anujit Roy Chaudhary.

0: पर यशराज बादल सुन रहे थे। कलाकार थे अनुजीत राय चौधरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे संजय कुमार मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए हम आपको सुनाएंगे राग तोड़ी पर ख्याल गायन। कलाकार हैं भ्रमंती सरकार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आशीष मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सोमनाथ बरधान। तो लीजिए प्रस्तुत है राग तोड़ी पर ख्याल। कलाकार हैं भ्रमंती सरकार।
1: You were listening to a recital on the Esraj in the Rag Jaunpuri. Our artist was Anujit Roy Chaudhuri. Accompanying our artist on the tabla was Sanjay Kumar Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a khayal. Listen to a khayal in the Rag Todi. Our artist is Vramanti Sarkar. Accompanying our artist on the tabla is Ashish Mukhopadhyay and on the harmonium is Somnath Bardhan. Listen now to a khayal in the rag Todi. Our artist Vramanti Sarkar.

0: अभी आप रागतोड़ी पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे भरमंती सरकार, आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे आशीष मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सोमनाथ बर्धान। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग टोड़ी। आवर आर्टिस्ट वॉज भ्रमंती सरकार। Accompanying our artist on the tabla was Ashish Mukhopadhyay, and on the harmonium was Somnath Bardhan. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत. कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं अश्विनी टिड़क का गाया दादरा मिश्र जौनपुरी राग में. बोल है नई जुलन की शैया बलम दुखहरिया बीते लहा. आइए सुनते हैं दादरा.

अभी आपने अश्विनी टिरक की गायी मिश्र देश राग में ठुमरी सुनी। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं मांझ खमाज राग में ठुमरी। बोल है बैर नरतिया कैसे आऊं।

अभी आपने अश्विनी टिरक की गई ठुमरी सुनी। कार्यक्रम के अंत में सुनते उन्हीं की आवाज में मिश्र पहाड़ी दादरा बोल है, सावन का नजारा है ऐसे में आ जाओ सनम।

अभी अभी अश्विनी टीरक का गाया उपशास्त्रीय संगीत सुना। रागम 24/7 DTH के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 27 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैरागी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं काज मोरे बन आवे और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं नैना तिहारे मन भावे. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल बाय उस्ताद गुलाम सादिक खान. He begins the recital with a rendition in Raag Bairagi. The Vilambit Khayal is set to Ektaal. The words are Kaj Mure Ban Aave. The Drut is set to Titaal. The words are Naina Tihare Man Bhave. He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the harmonium by Sajjad Ahmed.

वी मिशन भावना मनमानस और कनिका पटेल, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिर और नूर, चलाला काठियाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल, महबूब दल, इकबाल दल, कटारिया कच्छ से मंतिक राधाणी, डॉक्टर निशांत राधाणी, कबीर राधाणी और रमजान राधाणी। आप सभी की पसंद पर आपने सुना मल्हार फिल्म का ये गीत और कार्यक्रम का अगला गीत है धर्मात्मा फिल्म से और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हेवर खेड़ तेल्हारा अमोला महाराष्ट्र से, माफ कीजिएगा अकोला महाराष्ट्र से आप हैं, विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता उर्वीबेन अढ़िया, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, गुमारेता नगर उपारे से अनिल कवलाले, सुषमा और सबीहा, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विन कुमार, गणेश राम, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार सुनना चाहता है धर्मात्मा फिल्म का ही गीत। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मुकेश और कंचन की आवाज में धर्मात्मा फिल्म से गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

धर्मात्मा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और हम सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद पर आधारित गीत। और अगला गीत मेरा गांव मेरा देश फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमें आई है प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर से, वी पूनम नायडू, साजन के, मास्टर शिवांशु, ऋषु, अक्षय और अभिषेक नायडू, अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता नायडू, डी कृष्णाराव नायडू, अमृता और संतोष, मालीवेज बीड शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, कोरदा लदन से लवन से शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा, वेद किरण वर्मा और जुनातार फैल, अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे, मराठवाड़ा नांदेड़ से वामन मगरे और उनका पूरा परिवार आप सभी के पसंद पर सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और बोल आनंद बख्शी के। तो सुनिए आपकी ही पसंद पर ये गीत।

0: देखो ऐसे, फिर घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे, देखा?
1: हाँ, तुमने किसे सीखी?
0: खुद ही सीखी?
1: नहीं।
0: और नहीं तो क्या?
2: झूठ, मुझे तो मामा जी ने सिखाई।
0: मैं एक बार भी नहीं गिरी थी। जानते हो ये साइकिल मुझे किसने लाके दी है?
1: पापा ने।
0: नहीं।
1: तो फिर?
0: तुम ही बताओ।
1: मुझे क्या मालूम?
0: मामा जी ने।
1: पापा मम्मी ने चलाने दी।
0: और क्या, मैं इस पर बैठकर बाजार जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, पापा के लिए सिगरेट लाती हूँ, मम्मी पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते।
1: एक दिन मैंने भी सिगरेट पी थी।
0: झूठ।
1: झूठ क्यों? चोरी चोरी पी थी।
0: फिर?
1: शाम को डैडी ने सिगरेट ढूंढी, मम्मी ने भी ढूंढी।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर मम्मी ने थक कर कहा, वो चूहे ले गए होंगे।
0: चूहे?
1: फिर उन्होंने झगड़ा किया। मैंने झूठ मूठ नींद का बहाना किया। अब डैडी सिगरेट अपनी अलमारी में बंद रखते हैं,

0: अभी आप उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग मेघ सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खां ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ परफॉर्मेंस इन राग मेघ बाय उस्ताद गुलाम सादिक खां। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय नवाब अली खां एंड ऑन द हारमोनियम बाय सज्जाद अहमद। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

Gari gari bagari sani gabani da.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन, ताल एक ताल, साथ संगत है सारंगी पर मधुकर खाडिलकर, वायलिन पर पी शामन्ना। आइए सुनते हैं उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन।

अभी आपने उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन सुना, आइए सुनते हैं उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबला वादन ताल रूपक। साथ संगत है सारंगी पर मधुकर खडिलकर, वॉयलिन पर पी शामन्ना। आइए सुनते हैं उस्ताद अमीर हुसैन खां का तबले पर बजाया ताल रूपक।

अभी आपने उस्ताद आमिर हुसैन खां का तबला वादन सुना। साथ संगत थी सारंगी पर मधुकर खाड़ीलकर, वॉयलिन पर पी शामन्ना। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं अनुराधा पॉल का तबला वादन ताल झपताल। साथ संगत है हारमोनियम पर अप्पा जलगांवकर। आइए सुनते हैं अनुराधा पॉल का तबला वादन

अभी आपने अनुराधा पॉल का तबला वादन सुना, सात संगत की हारमोनियम पर अप्पा जलगांवकर। आइए सुनते हैं विनायक फटक का तबला वादन, ताल रूपक। सात संगत है वायलिन पर रत्नाकर गोखले।

अभी आपने विनायक फाटक का तबला वादन सुना, साथ संगत की वॉयलिन पर रत्नाकर गोखले। रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रागम 24/7 चैनल पर ये आकाशवाणी पुणे की निर्मित थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग अहीर भैरव में सितार वादन. कलाकार हैं सभ्यसाची सरकार. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवशी सरकार. तो आइए सुनते हैं राग अहीर भैरव में सितार वादन. आज के कलाकार हैं सभ्यसाची सरकार.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट a Hindustani instrumental recital. Listen to a sitar recital in Rag Ahir Bhairab. Our artist this morning, Sabyasachi Sarkar. Accompanying on the tabla, Devashish Sarkar. Now, listen to a sitar recital in Rag Ahir Bhairab by our artist, Sabyasachi Sarkar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे सव्यसाची सरकार। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवशी सरकार। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग गुर्जरी तोड़ी में संतूर वादन। कलाकार हैं पंडित तरुण भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं कौशिक चट्टोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग गुर्जरी तोड़ी में संतूर वादन। कलाकार पंडित तरुण भट्टाचार्य।
1: You are listening to a sitar recital in Rag Ahir Bhairab by our artist Sabyasachi Sarkar, accompanying on the tabla Devashish Sarkar. This is Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, listen to a santur recital in Rag Gurjari Tori. Our next artist, Pandit Tarun Bhattacharya, accompanying on the tabla Kaushik Chattopadhyay. Now, listen to a santur recital in Rag Gurjari Tori by our artist Pandit Tarun Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुर्जरी तुड़ी में संतूर वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित तरुण भट्टाचार्य। तबले पर आपको साथ दे रहे थे कौशिक चट्टोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ संतूर रिसाइटल इन राग गुर्जारी टोरी बाय आवर आर्टिस्ट पंडित तरुण भट्टाचार्य, एकम्पनिंग ऑन द तबला कौशिक चट्टोपाध्याय। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 ऑन डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: श्री प्रभाकर व्यास से प्राप्त की और इसके उपरांत डॉक्टर ज्योत्सना मोहिले से भी आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपकी संगीत यात्रा को वास्तविक दिशा और मजबूत बुनियाद तब मिली जब जयपुर अतरौली घराने की दो वरिष्ठ गायिकाओं श्रीमती कमलाताई तांबे और श्रीमती कौशल्या मंजेश्वर ने लगभग दो दशकों तक आपको जयपुर अतरौली घराने की गायकी और बालिकियों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन किया। आपने जयपुर गायकी के विद्वान पंडित अरुण द्रविड़ और प्रोफेसर मिलिंद माल्शे से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपने दोनों गुरुओं से प्राप्त तालीम के आधार पर आपकी गायकी में खुली आवाज में किया गया आकार, लय के साथ कदम से कदम मिलाती हुई बोल, उपज तथा तानों में सुंदर गमक के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं और ये सब कुछ राग के निर्धारित स्वरूप और उसकी मर्यादा के भीतर रहता है। जयपुर अतरौली घराने की महान गायन तपस्विनी श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर की गायकी को प्रस्तुत करने और उसका प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख गायिकाओं में आपका विशेष स्थान है। आपको अनेक प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपने आकाशवाणी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया और वर्ष 1987 से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए नियमित रूप से प्रस्तुति देती आ रही हैं। आप आकाशवाणी की उच्च श्रेणीय कलाकार हैं। आप ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। आपने देश भर में आयोजित अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आज की सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का शुभारंभ राग बिहागड़ा से कर रही हैं। विलंबित बंदिश तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं प्यारी पग होले होले धरिए और द्रुत तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री यति भागवत, हारमोनियम पर हैं श्री अनंत दोषी और सारंगी पर हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट द वोकल रिसाइटल बाय रिनाउंड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट विदुषी प्रतिमा तिलक। बॉर्न इन नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड, विदुषी प्रतिमा तिलक शोड अ नेचुरल फ्लेयर फॉर म्यूजिक सिंस अर्ली चाइल्डहुड। With unequivocal support from her parents, she was initiated into the ocean of music by Mrs. Suhasini and Mr. Prabhakar Vyas and later by Dr. Jyotsna Mohile. Her musical journey took firm root when two senior vocalists of the Jaipur Atrauli Gharana, Shrimati Kamaltai Tambe and Shrimati Kaushalya Manjeshwar, trained and mentored her into the intricacies of the Jaipur Atrauli Gharana Gayaki over a period of two decades. She has also received guidance from Pandit Arun Dravid and Professor Milind Malshe, both scholars of Jaipur Gayaki. Based on the solid talim that she received from both her gurus, her Gayaki is embellished with open-throated akar, bol, upaj, going hand-in-hand with the lay and beautiful gamak patterns of taan, all within the framework of the raga. One of the leading vocalists to present and propagate the gayaki of the legendary Gaan Tapaswini, Shrimati Mogubai Kuldikar of the Jaipur Atrauli Gharana, Vidushi Pratima Tilak aesthetically unfolds the raga to bring out its true essence. Vidushi Pratima Tilak is Akashwani top grade artist in Hindustani classical music. She is also an empanel artist of the ICCR, Indian Council for Cultural Relations. Tonight, Vidushi Pratima Tilak begins her classical vocal recital with raag Bihagda, Vilambit Bandish set to Tintal. Bol, Pyari Pag Hole Hole Thariye, Drut Tarana set to Tintal. Accompanying her on the tabla is Shri Yati Bhagwat, and on the harmonium is Shri Anant Joshi, and on sarangi Ustad Farooq Latif Khan.

आज की सभा में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध गायिका विदुषी प्रतिमा तिलक का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन। विदुषी प्रतिमा तिलक का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इसके बावजूद बचपन से ही आपकी संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। अपने माता पिता के पूर्ण सहयोग से आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा श्रीमती सुहासिनी एवं

0: ये था राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का समापन राग सुहा से कर रही हैं। द्रुत बंदिश एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं प्रीत सो प्रीत चंदा, और द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल है झूम झूम झूम बदरवा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक कंक्लूड्स हर वोकल रिसाइटल विथ राग सुहा। द्रुत बंदिश सेट टू एक ताल, बोल प्रीत सो प्रीत चंदा, ऑल्सो द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल, बोल झूम झूम झूम बदरवा।

0: ये था राग सुहा। तबला संगत श्री यति भागवत, हारमोनियम श्री अनंत दोषी और सारंगी पर थे उस्ताद फारूख लतीफ खान। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक का गायन अब संपन्न होता है। आकाशवाणी के मुंबई स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दैट वॉज राग सुहा एंड दैट कंक्लूड्स वोकल रिसाइटल विदुषी प्रतिमा तिलक इन टुनाइट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। She was accompanied on tabla by Shri Yati Bhagwat and on harmonium by Shri Anant Joshi and Sarangi Ustad Farooq Latif Khan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.

Hello.

आप सुन रहे हैं ध्रुपद गायन, कलाकार हैं पंडित सियाराम तिवारी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ध्रुपद रिसाइटल बाय पंडित सियाराम तिवारी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग मियां मल्हार में आलाप, जोड़, झाला और धमार। बंदिश के बोल हैं खेलन आए होरी श्याम। नाउ द आर्टिस्ट स्ट्रेंडर्स, राग मियां मल्हार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ध्रुपद गायन, कलाकार थे पंडित सियाराम तिवारी, संगत कलाकार थे पखावज पर पन्नालाल उपाध्याय और सारंगी पर समद खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वे लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ध्रुपद रिसाइटल बाय पंडित सियाराम तिवारी। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पन्नालाल उपाध्याय ऑन द पखावज एंड समद खां ऑन द सारंगी। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH, India Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत. आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गिटार वादन. कलाकार हैं दीपांकर राय चौधरी. इस कार्यक्रम में पहले सुनते हैं राग नट भैरव. तबले पर संगत की है भरत कुमार मिश्र ने.

अभी आप सुन रहे थे दीपांकर राय चौधरी का गिटार पर बजाया राग नट भैरव। अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया गिटार पर राग कीरवानी। तबले पर संगत की है भरत कुमार मिश्र ने।

अभी आप सुन रहे थे दीपांकर राय चौधरी की गिटार बजाई राग मिश्र पहाड़ी धुन। तबले पर संगत की थी भरत कुमार मिश्र ने। ये कार्यक्रम रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संघ के अंतर्गत आप तक पहुंचा।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित एल के पंडित का गाया राग विभास. विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है. बोल हैं मोहन जागो और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं आज मोरे घर आए. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और संगी पर अमीर खान ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित एल के पंडित. He begins his recital with a performance in Raag Vibhas. Vilambit Khayal is set to Tilwada Taal. The words are Mohan Jagu. The Drut Khayal is set to Teen Taal and the words are Aaj Mure Ghar Aaye. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Amir Khan.

0: अभी आप पंडित एल के पंडित का गाया राग विभास सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग शुद्ध सारंग। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं नाम निरंजन। और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं तू है निराकार। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने।
1: You just heard Raag Vibhas performed by Pandit L.K. Pandit. He was accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Amir Khan. He now presents a rendition in Raag Shuddh Sarang. The Vilambit Khayal is set to Ek Taal and the words are Naam Niranjan. The Drut Khayal is set to Teen Taal. The words are Tu Hai Nirakar.

0: अभी आप पंडित इल्के पंडित का गाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर अमीर खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: That was पंडित इल्के पंडित परफॉर्मिंग राग शुद्ध सारंग। He was accompanied on the tabla by विनोद पाठक and on the sarangi by अमीर खान। This program was presented by All India Radio Delhi।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हर पल हर दिन भारतीय संगीत, यह है रागम DTH चैनल। प्रस्तुत है भक्ति संगीत और आइए आप सुने एक भजन वाणी जयराम की आवाज में, मेरे तो गिरधर गोपाल।